उनके पहलू बिछौनों से अलग रहते हैं और वो अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारते और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं।

और वो बुरा ठिकाना है। जिन दो ग्रोहों में टक्कर हुई उनमें तुम्हारे लिए निशानी है। एक ग्रोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा काफिर था। ये इनको आंखों देखने में अपने से दुगना देख रहे थे और अल्लाह अपनी मदद के जरिए जिसकी ताईद चाहता है करता है, उसके अंदर यकीनन नजर वालों के लिए इबरत है। बहरहाल बनू कैनका ने जो जवाब दिया था उसका मतलब साफ साफ ऐलान जंग था। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना गुस्सा पी लिया और सबर किया। मुसलमानों ने भी सबर किया और आने वाले हालात का इंतजार करने लगे। इधर इस नसीहत के बाद यहूद बनू कैनका की जुर्रत रिंदाना और बढ़ गई। चुनाचे थोड़े ही दिन गुजरे थे कि उन्होंने मदीने में तबुआ और हंगामा बपा कर दिया, जिसके नतीजे में उन्होंने अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद ली और अपने ऊपर जिंदगी की राह बंद कर ली। इब्ने हशाम ने अबू औन से रवायत की है कि एक अरब औरत बनू कैनका के बाजार में कुछ सामान लेकर आई और बेचकर किसी जरूरत के लिए एक सुनार के पास जो यहूदी था बैठ गई। यहूदियों ने उसका चेहरा खुलवाना चाहा, मगर उसने इनकार कर दिया। इस पर उस सुनार ने चुपके से उसके कपड़े का निचला किनारा पिछली तरफ बांध दिया और उसे कुछ खबर न हुई। जब वो उठी तो इससे बेपर्दा हो गई तो यहूदियों ने कहका लगाया। इस पर इस औरत ने चीख पुकार मचाई, जिसे सुनकर एक मुसलमान ने उस सुनार पर हमला किया और उसे मार डाला। जवाबन यहूदियों ने इस मुसलमान पर हमला करके उसे मार डाला। इसके बाद मकतूल मुसलमान के घर वालों ने शोर मचाया और यहूद के खिलाफ मुसलमानों से फरियाद की। नतीजा ये हुआ कि मुसलमान और बनी कैनका के यहूदियों में बलवा हो गया। इस वाकये के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मदीने का इंतजाम अबू लबाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु को सौंपा और खुद हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में मुसलमानों का फरेरा देकर अल्लाह के लश्कर के हमरा बनू कैनका का रुख किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को देखा तो घड़ियों में किला बंद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उनका सख्ती से मुहासरा कर लिया। ये जुम्मे का दिन था। 15 रोज तक यानी हिलाल ज़िलकदा के नमूदार होने तक मुहासरा जारी रहा। फिर अल्लाह ताला ने इनके दिलों में रोब डाल दिया, जिसकी सुन्नत ये है कि जब वो किसी कौम को शिकस्त व हजीमत से दोचार करना चाहता है तो उनके दिलों में रोब डाल देता है। चुनाचे बनू कैनका ने इस शर्त पर हथियार डाल दिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उनकी जानो माल, आल औलाद और औरतों के बारे में जो फैसला करेंगे उन्हें मंजूर होगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हुक्म से इन सब को बांध लिया गया। लेकिन यही मौका था जब अब्दुल्ला बिन उबई ने अपना मुनाफिकाना किरदार अदा किया। उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सख्त इसरार इल्हा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इनके बारे में माफी का हुक्म सादर फरमाए। उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, मेरे मुआहिदीन के बारे में एहसान कीजिए। वाज़े रहे कि बनू कैनका खजरज के हलीफ थे, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ताखीर की। इस पर उसने अपनी बात फिर दोहराई, मगर अब की बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उससे अपना रुख फेर लिया। लेकिन इस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के गिरेबान में अपना हाथ डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे छोड़ दो, और ऐसे गजबनाक हुए कि लोगों ने गुस्से की परछाइयां आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के चेहरे पर देखी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस, मुझे छोड़। लेकिन ये मुनाफिक अपने इसरार पर कायम रहा और बोला, नहीं, बाखुदा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि आप मेरे मुआहिदीन के बारे में एहसान फरमा दें। 400 खुले जिस्म के जवान और 300 जिरा पोश जिन्होंने मुझे सुर्ख व स्याह से बचाया था, आप उन्हें एक ही सुबह में काट कर रख देंगे। वल्लाह, मैं जमाने की गर्दिशों का खतरा महसूस कर रहा हूँ। बिलाखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुनाफिक के साथ, जिसके इजहार इस्लाम पर अभी कोई एक ही महीना गुजरा था, रियायत का मामला किया और इसकी खातिर इन सब की जान बख्शी कर दी। अलबत्त उन्हें हुक्म दिया कि वो मदीने से निकल जाएं और आपके पड़ोस में ना रहें। चुनाचे ये सब हजरात शाम की तरफ चले गए और थोड़े ही दिनों बाद वहां अक्सर की मौत वाकई हो गई। सामईन, यहां पर एक वक्फा।
और वक्फे से वापस आकर हम अपने इसी सिलसिले को मजीद आगे लेकर

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आमना महमूद, मुखातिब हूं आपसे FM 92.6 UCP की दुनिया से। लिसनर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी फास्ट पेस से इवॉल्व हो रही है, AI, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, और हम सब इन चेंजेस को अपनी ज़िंदगी में देख भी रहे हैं और एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फाउंडेशन लेवल इशू को एड्रेस करता है। हम बात करने जा रहे हैं एक्सपोजिंग द सेफ्टी इल्यूजन इन AI एवेल्युएशन, यानी जो AI हम रोज यूज करते हैं, क्या वे असल में उतनी सेफ, एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी होती है जितना हमें टेस्ट दिखाते हैं, या फिर टेस्ट खुद एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। हमारे साथ इस अहम गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गुलशन सलीम, जो UCP के FOIT & CS के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और AI सेफ्टी, मशीन लर्निंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की रिसर्च पर काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा।
2: वालेकुम अस्सलाम,
1: कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र।
1: बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला।
2: शुक्रिया इनवाइट करने के लिए।
1: वक्त जाए के बगैर हम अपने सवालात की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि AI एवेल्युएशन होता क्या है?
2: AI एवेल्युएशन बेसिकली वो प्रोसेस है जहाँ हम AI मॉडल्स को टेस्ट करते हैं ताकि उनकी एक्यूरेसी, सेफ्टी, कंसिस्टेंसी, रीजनिंग, हार्मफुल कंटेंट अवॉइडेंस और फैक्चुअल करेक्टनेस को मेजर किया जा सके।
1: जी,
2: ये एवेल्युएशन जनरली स्टैंडर्ड डेटा सेट्स पर होती हैं, जैसे बेंचमार्क्स, MCQs, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, कोडिंग टेस्ट, सेफ्टी सिनेरियोस और कन्वर्सेशन बेस्ड मेजरमेंट्स। मसला तब बनता है जब हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर AI टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो रियल वर्ल्ड में भी इक्वली परफॉर्म करेगी।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन ये अजम्पशन हमेशा सही नहीं होती, क्योंकि एवेल्युएशन हेल्पफुल ज़रूर होती है लेकिन रियल वर्ल्ड रिलायबिलिटी को समझने के लिए कभी कभी सफिशेंट नहीं होती।
1: बिल्कुल,
2: तो ये हमें टेस्ट करने से पता लगता है कि इसमें क्या फ्लॉज हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या AI मॉडल्स को पता होता है कि उन्हें टेस्ट किया जा रहा है?
2: ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जो LLMs हैं उनके पास एक्सप्लिसिट अवेयरनेस नहीं होती
1: जी,
2: या उनकी अपनी कॉन्शियसनेस नहीं होती। उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होते हैं, पैटर्न अवेयर होते हैं। ट्रेनिंग डाटा में अक्सर टेस्ट फॉर्मेट या एग्जाम स्टाइल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ड्यू टू सेम पैटर्न, जैसे MCQs पैटर्न हो गए। एवेल्युएशन डाटा सेट्स में हमारे पास जैसे फ्रेजिंग स्टाइल होता है वो उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हम जब कभी कभी प्रॉम्प्ट देते हैं तो मॉडल उसे पहचान लेता है, उनका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लेता है, बिकॉज वो सिमिलर स्ट्रक्चर पर बनी होती हैं। तो टेस्ट स्पेसिफिक ट्रिक्स यूज करके अपना स्कोर बेहतर कर लेते हैं।
1: बिल्कुल,
2: हम आर्टिफिशियली प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव भी कर लें तो स्टिल उसमें सेफ्टी इल्यूजन क्रिएट हो जाती है, यानी कि हम टेस्ट के दौरान हमें मॉडल बहुत सेफ, कॉशियस और इंटेलिजेंट नज़र आता है, जबकि रियल वर्ल्ड में वो उतना स्टेबल नहीं होता जितना हम अज्यूम कर रहे होते हैं। क्योंकि हमने जब उसे टेस्ट प्रॉम्प्ट देके अपनी तरफ से फिल्टरिंग की और टेस्ट किए तो वी रियलाइज के ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट जब हम रियल वर्ल्ड में उसे टेस्ट करेंगे तो वो उस तरह का परफॉर्म नहीं करेगा, या जो स्कोर उसने टेस्ट के दौरान अचीव किया था सेफ्टी मेजर्स पे वो रियलिटी में नहीं होता। तो हम इसलिए कहते हैं कि इल्यूजन है।
1: अभी आपने जिक्र किया सेफ्टी इल्यूजन का, तो हमारे सुनने वालों को बताएं कि सेफ्टी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट क्या है?
2: सेफ्टी इल्यूजन का मतलब ये होता है कि AI टेस्ट हमें वो तस्वीर दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, ना कि वो जो AI असल दुनिया में परफॉर्म करेगी। टेस्ट सिनेरियोस प्रेडिक्टेबल होते हैं और AI उन प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स को लर्न कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस आर्टिफिशियली अच्छी नज़र आती है।
1: बिल्कुल,
2: मिसाल के तौर पे स्ट्रक्चर टेस्ट क्वेश्चंस को मॉडल आसानी से गेस कर लेता है। अब सेफ्टी फिल्टर्स टेस्ट में स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं इसलिए मॉडल सेफ लगता है। रियल वर्ल्ड में प्रॉम्प्ट्स मैसी होते हैं, वेग होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जहाँ पे AI फेल हो सकती है या हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि AI कि टेस्ट सेफ्टी एक इल्यूजन है, जबकि रियल सेफ्टी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें कि जब हमने इसको एवेल्युएट किया टेस्ट के लिए और जब इसने रियलिटी में जो स्कोर परफॉर्म किया, तो उनमें बहुत मिसमैच होता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये इल्यूजन डेंजरस क्यों समझे जाते हैं या ये डेंजरस क्यों है?
2: ये इल्यूजन कई वजह से डेंजरस है। सबसे पहले ये यूजर में ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देती है। जहाँ वो सोचते हैं कि AI हमेशा सही जवाब देगी, या दूसरा मिसयूज कर इसका आ जाता है, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या डिफरेंट बिजनेसेस डोमेन्स हैं जहाँ पे बिना वेरीफाई किए AI के डिसीजंस यूज़ कर लेते हैं। तीसरा हमारे पास मसला बनता है कि एक्सपोजर, बायस एक्सपोजर हमारे पास आ जाता है। अब बायस एक्सपोजर हमारे पास सेफ्टी वैल्यूएशंस में तो नज़र नहीं आता, या मॉडल हमारे पास क्योंकि वो उस टाइम एवेल्यूएट हो रहा होता है तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हम ये समझते हैं कि अगर टेस्ट में इसने बायस एक्सपोजर नहीं शो किया तो अदरवाइज हमारे पास रियलिटी में भी नहीं होगा। बट जब रियलिटी में कोई प्रॉम्प्ट दी जाती है तो वहाँ पे प्रॉम्प्ट में बायस हो सकता है, क्योंकि वो उस तरह से डिज़ाइन नहीं हुई जैसे कि हमारा कोई भी टेस्ट पैटर्न डिज़ाइन किया होता है। फिर हमारे पास सेफ्टी बायपासिंग भी एक मेजर इशू है, जहां AI सिंपल रीफ्रेजिंग से हार्मफुल कंटेंट जनरेट कर देती है और वो उससे खुद भी अवेयर नहीं होती। चौथा, सेफ्टी बायपासिंग भी एक मेजर इशू है, जहां AI सिंपल रीफ्रेजिंग से हार्मफुल कंटेंट जनरेट कर देती है इवन आफ्टर स्कोरिंग टॉप इन सेफ्टी वैल्यूएशंस। हमारे पास रॉन्ग डिसीजन मेकिंग का रिस्क बना रहता है, स्पेशली मेडिसिन, लीगल एडवाइस, हायरिंग के प्रोसेस हो गया या ग्रेडिंग होगी, जो इस तरह के सेंसिटिव एरियाज हैं जो रियल टाइम में ह्यूमन के लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। AI का गलत बिहेवियर वहाँ पे एक उनके लिए रियल टाइम में कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है।
1: बिल्कुल,
2: हमें ये लगता है कि हमने जो मॉडल को यूज़ किया है वो रिलायबल है, हम डिसीजन मेकिंग के लिए रिलाई कर सकते हैं, बट जब इसको यूज़ किया जाता है तो वो इल्यूजन ब्रेक हो जाती है बट कॉन्सिक्वेंसेस रियल बन जाते हैं।
1: बिल्कुल लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का। हमारे साथ रहें, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। यूसीपी की
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। लिसनर्स, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सेफ्टी इल्यूजन्स एआई इवैल्यूएशन के अंदर किस तरह काम करते हैं या किस तरह उनका इस्तेमाल होता है। हमारे साथ इस अहम गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं डॉक्टर गुलशन सलीम साहिबा, और उन्होंने हमें बड़ी तफसील से बताया कि किस के सेफ्टी इल्यूजन्स क्या होते हैं, एवेल्यूएशन क्या होती है और ये किस तरह से काम करते हैं। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहिबा, ब्रेक पर जाने से पहले आपने हमें सेफ्टी इल्यूजन्स का बताया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरह डेंजरस साबित होते हैं और इनके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो रियल लाइफ में हमें फेस करने पड़ते हैं। ये जो इशू है सेफ्टी इल्यूजन का, ये एकेडेमिक और एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में ये मसला कितना सीरियस बन जाता है?
2: यूनिवर्सिटीज़ में एआई का यूज़ बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, जिसमें असाइनमेंट्स, कोडिंग, रिसर्च समरीज, कंटेंट जनरेशन, क्विज असिस्टेंस और यहाँ तक कि थीसिस स्ट्रक्चरिंग भी शामिल है।
1: बिल्कुल।
2: प्रॉब्लम यहाँ है कि एआई टेस्ट बेस्ड एवेल्यूएशन के दौरान तो हमें सेफ और एक्यूरेट लगती है, लेकिन रियल यूजेज में हेलुसिनेशन अपेयर हो जाता है जब हम इतने इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स के लिए, कोडिंग के लिए या थीसिस स्ट्रक्चरिंग के लिए एक ऐसे सोर्स पर रिलाय करते हैं जिसकी एवेल्यूएशन हमें ऑर्डरी तौर पे नॉर्मल या सेफ लग रही है
1: जी,
2: बट वो असल में उतनी सेफ नहीं होती। तो और उसके साथ हमारे पास जब जो प्रॉम्प्ट का रिजल्ट आता है, एक तो उसमें हेलुसिनेशन होगी, फिर वहाँ पे फॉल्स साइटेशन जनरेट होंगी, फेक रेफरेंसेस बन जाते हैं, कंटेंट जो है वो भी बाइस हो सकता है, और फिर हमारे पास ऐसे फैक्ट्स जो कि असल में उस डेंसिटी के साथ प्रूवन नहीं होते, वहाँ पे भी हमें एआई ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आती है एंड हम अज्यूम करते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट आंसर। तो उस वजह से हमें ये लगता है कि जो भी हमें इसका प्रॉम्प्ट का आंसर मिला है ये यूज़फुल है, इंटेलिजेंट है और रिलायबल है। स्टूडेंट इन आउटपुट्स पर बिना वेरीफाई किए यकीन कर लेते हैं, इसलिए एकेडमिक सेफ्टी इल्यूजन और ज़्यादा नोटिसेबल हो जाती है जब स्टूडेंट्स की लर्निंग क्वालिटी भी कम्प्रोमाइज हो जाए तो।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि जब वो ऐसे सोर्स पर रिलाई कर रहे हैं जिसको वो वेरीफाई भी नहीं कर रहे और उसी के बेस पे वो अपनी फ्यूचर लर्निंग कर रहे हैं, और उसको अगर उन्होंने वेरीफाई नहीं किया तो वो ऐसे फैक्ट्स पे डिपेंड कर रही होगी जो कि ऑलरेडी फॉल्स भी हो सकते हैं या मिसलीडिंग हो सकते हैं।
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या एआई कभी कभी टेस्ट को चीट भी कर सकती है या करती है?
2: साइंटिफिक टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो हम असल में इसको चीट नहीं कहते या कि एआई चीट करेगी, बट एआई अपना बिहेवियर जो है कभी कभार चीटिंग जैसा बना लेती है, या जैसे हम ये अज्यूम करते हैं कि एक ह्यूमन अगर जैसे चीट करेगा उसमें जो आस्पेक्ट्स नज़र आएंगे हमें सेम आस्पेक्ट्स नज़र आने लगते हैं
1: जी।
2: मॉडल ट्रेनिंग जिन पैटर्न से मेमोराइज होता है उन्हीं के हिसाब से वो ओवरफिटेड रिस्पांस जनरेट कर देता है। एवेल्यूएशन क्यूज़ को वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है जिन क्यूज़ के बेस पे मैंने उसे एवेल्यूएट करना है, और फेमिलियर क्वेश्चन फॉर्मेट पे वो उस अपना रिस्पांस जो है वो इम्प्रूव कर लेता है, जबकि अनसीन या अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियोज में स्ट्रगल करता है। ये बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह होता है जो पास्ट एग्ज़ाम सेट ले ले और उसके बाद उसको रट्टा लगा ले, रट्टा लगाने के बाद अगर उसको सिमिलर स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछे जाएं तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, बट अगर उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम दी जाए जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस बहुत वीक नज़र आती है। इसी तरह से हमारे पास एआई में है कि अगर हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट हों जैसे कि जिनके लिए हमने उसे एवेल्यूएट किया होता है तो तब वो अच्छा परफॉर्म करती है, बट जैसे ही प्रॉम्प्ट अनप्रेडिक्टेबल और न्यू टू वर्ल्ड जैसे होंगी तो वो उसी तरह से अनस्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल ही परफॉर्म करेगा।
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स जहां सेफ्टी इल्यूजन ब्रेक होती हुई नज़र आ रही हो?
2: सेफ्टी इल्यूजन ब्रेक होने की तो बहुत सारी एग्जांपल हैं। अगर आप मॉडल की सेफ्टी क्यू की बात करें तो जैसे कि मैं अगर सेफ्टी क्यू यूज़ कर रही हूँ कोई, तो मैं प्रॉम्प्ट देना चाहूँगी कि प्लीज़ आंसर रिस्पॉन्सिबली, तो एआई हाईली कॉशियस होके फिल्टर्ड आउटपुट जनरेट करती है। लेकिन रियल वर्ल्ड में मैं ऐसा प्रॉम्प्ट क्यों दूंगी? मैं प्रॉम्प्ट तो दूंगी बस सिंपल सा बता दो ये केमिकल किस तरह से रिएक्ट करता है। पर यहाँ अब एआई जो है वो उसका मेजरमेंट करने का तरीका या मेरी प्रॉम्प्ट को असेस करने का तरीका डिफरेंट हो गया, क्योंकि मैंने उसको पहले से ये नहीं कहा कि रिस्पॉन्सिबल होके आंसर करना है। तो उसने जस्ट मेरी एक मैसी और प्रॉम्प्ट को कंसीडर करना और उसके बेस पे एक आंसर करना है। यहाँ पे वो अनसेफ भी हो सकता है, इसी तरह से एक्यूरेसी क्यूज, जैसे कि हम कहें यू विल बी एवेल्यूएटेड फॉर फैक्चुअल करेक्टनेस, अगर मैं इस तरह की कोई टर्म यूज़ करूँ कि लाइक मैं उसको पहले ही बता रही हूँ कि आपको वैल्यूएट किया जा रहा है फैक्चुअल करेक्टनेस के लिए, कि फैक्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा, तो साथ ही हमारे पास जो मॉडल है वो रिलेटिवली रिलायबल आंसर देता है और जो फेक या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है उसे अवॉइड करता है। लेकिन नेचुरल प्रॉम्प्ट में इस हम ये क्या कहेंगे कि इस टॉपिक पर थोड़ी सी डिटेल बता दें, जैसे मैं किसी टॉपिक के बारे में इंक्वायर करना चाह रही हूँ तो मैं उसको ये तो नहीं बताऊँगी ना कि मैंने फैक्चुअल करेक्टनेस पे भी चेक करना है, मैं कहूँगी मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो इस पे।
1: जी,
2: जब मैंने इस तरह की प्रॉम्प्ट देनी है तो वहीं पे मुझे हेलुसिनेशन आना शुरू हो जानी है, यानी कि मेरी जैसी प्रॉम्प्ट चेंज हुई तो वहाँ पर हेलुसिनेशन आ जाएगी। फिर इसके अलावा मॉरल फ्रेमिंग में भी यही होता है, एथिक्स एवेल्यूएशन की दौरान अगर हम ये कहें कि उसकी टोन जो है वो अनबाइस्ड होनी चाहिए, ठीक है, तो वो उन आइडियाज़ को कंसिडर करेगा जो कि किसी भी रिस्पॉन्स को बाइस्ड बिहेवियर की तरफ लेके जा सकते हैं। बट अगर मैं रियलिटी में देखूं तो मेरे मॉडल को जो प्रॉम्प्ट देनी है वो हम सिंपल ये पूछेंगे क्या ये सही है या किसी फैक्ट के बारे में क्या ये सही है गलत है, तो उसने एज़ पर माय कॉन्टेक्स्ट और मेरी जो प्रॉम्प्ट है उसके हिसाब से आंसर करना, ना कि ये सोचते हुए कि ये हर्टफुल हो सकती है, बाइस हो सकती है या ये अनएथिकल हो सकता है कहना। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि जितना वेल स्ट्रक्चर्ड हमारे पास प्रॉम्प्ट होगी उतना हमारे पास उसका रिस्पांस रिलायबल होगा, लेकिन जो एक कॉमन डेली यूज़ में हम प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं उनके लिए वो उतना सेफ्टी के साथ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अब जैसे ही मैं चेन ऑफ थॉट की अगर बात करूँ, अगर क्यू में मैं कोई चेन ऑफ थॉट ऑलरेडी मेंशन कर रही हूँ,
1: जी,
2: जैसे मैं कहूँ कि इस फैक्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएं,
1: बिल्कुल,
2: तो अब AI मुझे उसी स्ट्रक्चर्ड वे में के एक सीक्वेंस फॉलो करते हुए इन्फॉर्मेशन देगा।
1: जी,
2: और अब अगर मैं उसे रियल वर्ड प्रॉम्प्ट दूं तो मैं उसे सिंपल कहूंगी कि मुझे ओवरऑल इसका प्रोसेस बता दो, तरीका बता दो, उसमें वो सीक्वेंस नहीं होगा जो कि मे बी क्रूशल हो उस स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट के लिए। अगर वो प्रॉम्प्ट जो है किसी ऐसी डोमेन की है, जैसे वो हेल्थ केयर की डोमेन से है या वो जो है किसी लॉ से रेलिवेंट है या किसी सोशल एस्पेक्ट से रेलिवेंट है, तो वहाँ पे चीज़ों का आपस में कॉन्टेक्स्ट के क्या प्रॉम्प्ट के हिसाब से उसने पहले रिस्पॉन्ड दिया है या बाद में दिया है वो मैटर करेगा। और जब चेन ऑफ थॉट अगर मैंने स्टेप बाय स्टेप रखा हो तो वो स्टिल अपनी ही प्रीवियस प्रॉम्प्ट को भी एनालाइज करते हुए मुझे आंसर कर रहा होता है, लेकिन रियलिटी में हम इतने केयरफुल नहीं होते प्रॉम्प्ट देते हुए भी, और हम ये अज्यूम करते हैं कि इसको खुद समझ आ जानी है कि ये बताना है और ये नहीं बताना, और यहीं से हमारे बहुत सारे मसले बनते
1: हैं। जाते
2: हैं। हाँ जी जी ऐसे ही है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, AI रिसर्चर्स इस मसले को सॉल्व कैसे कर रहे हैं?
2: AI रिसर्चर्स ने इस इशू को टैकल करने के लिए कई नई इवेल्यूशन स्ट्रेटजीज डेवलप की हैं, क्योंकि जब हमने AI की बात करते हैं या हम इसके यूजेज की बात करते हैं तो टेस्ट सेफ्टी इवेल्यूशन या टेस्ट तो तब भी परफॉर्म किए होंगे।
1: जी,
2: तो अगर उसके बावजूद हमें ये मसले फेस करने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो इवेल्यूशन स्ट्रेटजीज हैं हमारी उनको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। तो इसी में हमारे पास एडवर्सेरियल टेस्टिंग आ जाती है, जहाँ पे हम डेलिबेटरी कंफ्यूजिंग प्रॉम्प्ट देते हैं, हम डिसेप्टिव या ट्रिकी प्रॉम्प्ट्स यूज़ करते हैं और उसकी वजह से हमें थोड़ा हेल्प होती है कि अगर हम इसे एक ट्रिकी प्रॉम्प्ट देंगे तो ये कैसा बिहेव करेगा। फिर हम हिडन बेंचमार्क्स यूज़ करते हैं, जहाँ मॉडल को नहीं पता होता कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या कौन से क्वेश्चन एवेल्यूएशन का हिस्सा हैं। डायनामिक बेंचमार्क्स हर यूज़र इंटरेक्शन के साथ अपडेट होते रहते हैं।
1: जी,
2: कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट टेस्टिंग में AI को अननोन, न्यू और आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियोस दिए जाते हैं। इसके साथ साथ एक स्ट्रेटजी है कि रेड टीमिंग हम यूज़ कर सकते हैं। रेड टीमिंग में एक्सपर्ट AI को इंटेंशनली अनसेफ आउटपुट जनरेट करने पे मजबूर करते हैं या ऐसे प्रॉम्प्ट देते हैं कि वो एक अनसेफ आउटपुट जनरेट कर सके, ताकि बाउंड्रीज को हम आइडेंटिफाई कर सकें या समझ सकें कि हमारे मॉडल की क्या लिमिट है। लॉन्ग फॉर्म कन्वर्सेशन चेक्स मल्टी टर्न डायलॉग्स के जरिए कॉन्ट्राडिक्शंस और मेमोरी इश्यूज को डिटेक्ट करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और कंटिन्यूस एवेल्यूशन पाइपलाइन इंश्योर करते हैं कि मॉडल्स डिप्लॉयमेंट के बाद भी कंसिस्टेंटली मॉनिटर किया जा रहा है। ये सब अप्रोचेस फ्यूचर एआई को ज्यादा रियलिस्टिकली एवेल्यूएट करने के लिए यूज की जा सकती हैं, क्योंकि इन सब में हम इस इंटेंट के साथ उसे एवेल्यूएट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी मिसलीडिंग या अनसेफ रिस्पॉन्स जनरेट होने के चांसेस क्या है।
1: लिसनर्स, वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का। हमारे साथ रहें, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। लिसनर्स, ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि AI इवैल्यूएशन में सेफ्टी इल्यूजंस क्या होते हैं और ये किस तरह हमारे रियल लाइफ पे इफेक्ट करते हैं, किस तरह रिसर्चर्स को प्रॉब्लम्स इससे फेस करनी पड़ती है। और इसी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलशन सलीम साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आपने ब्रेक पे जाने से पहले हमें बताया कि सेफ्टी इल्यूजन क्या होते हैं, ये किस तरह डेंजरस हो सकते हैं और एकेडमिक और एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में इनके क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, और फिर हम बात कर रहे थे कि रिसर्चर्स इससे किस तरह डील करते हैं। लेकिन हमारा जो असल कंसर्न है वो हमारे यूज़र्स, आम जो कॉमन पर्सन हैं, ले मैन हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिहाज से है। तो आप हमारे सुनने वालों को बताएं, हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि वो इन सेफ्टी इल्यूजन से बचने के लिए या इनको ओवरकम करने के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं।
2: आम यूज़र्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो AI आउटपुट्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। सबसे पहले हर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें, स्पेशली साइटेशन होगी, नंबर्स या स्टैटिक्स हो गए, और साथ ही हमारे पास जो फाइनल आंसर जनरेट करके दिया है किसी प्रॉम्प्ट का हमें, तो उसको समझने की कोशिश करें कि एज अ जनरेटर उसने जो प्रॉम्प्ट हमें जनरेट करके दिए या प्रॉम्प्ट का रिस्पांस दिया है वो एक्यूरेट है कि नहीं। और सिर्फ यूज़ जो है उसका गाइडेंस के लिए इस्तेमाल करें। अगर कोई जवाब बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है तो उसे डबल चेक करना चाहिए, क्योंकि हेलुसिनेशन भी कॉमन फैक्टर है हमारे पास AI में। और फिर दूसरा, हमारे पास पर्सनल या सेंसिटिव डेटा जो है AI के साथ शेयर ना करें, ठीक है। AI को टीचर का रिप्लेसमेंट ना समझें, ठीक है, उसको सिर्फ एक असिस्टेंट के तौर पे यूज़ करें। एक्चुअल एवेल्यूएटर इंसान खुद हो तो हमें ये मसले नहीं बनते। जब हम AI को ही टीचर समझ लेते हैं या वो हमें ऐसे रिस्पॉन्स जनरेट करता है कि हम ये समझते हैं कि इनको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तब हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अगर
1: समटाइम तो ये होता है कि टीचर की बताई हुई बात को स्टूडेंट समझते हैं कि गलत बता रहे हैं, जो हमने AI से पूछा था या ChatGPT से पता किया था वो ज़्यादा रिलायबल आंसर है।
2: यही रीज़न है कि हम ये अज्यूम करें कि सेफ्टी इल्यूजन के लिए एवेल्यूएशन स्ट्रेटजीज हमारे पास बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिलायंस हमारे पास इसमें जिस तरह से इंक्रीज़ हो रही है और लोग ये समझ रहे हैं कि ये मशीन है और ये स्टैटिस्टिक्स की बेस पे रिस्पांस दे रही है या फैक्ट्स की बेस पे दे रही है, वो उतना फैक्चुअल नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बायस अवेयरनेस मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि AI की सजेशन हमेशा कल्चरली न्यूट्रल नहीं होती हैं।

0: हम ये समझते हैं कि वो साथ साथ सीख रहे हैं और हर यूजर की कन्वर्सेशन के साथ ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं.
1: बिल्कुल.
0: टेक्निकली ऐसा नहीं होता. LLMs दो तरह की लर्निंग यूज करते हैं. प्री ट्रेनिंग, जो कि स्टैटिक होती है और जिसमें मॉडल बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे लर्निंग करता है, उन्हीं से पैटर्न सीखता है. और फिर री इन्फोर्समेंट लर्निंग या फाइन ट्यूनिंग, जो ह्यूमन रिसर्चर्स मैनुअली करते हैं, उसको यूज करके ट्रेन होता है. मॉडल खुद से रियल टाइम में अपडेट नहीं हो रहा होता. जब लोग देखते हैं कि मॉडल कन्वर्सेशन के फ्लो के साथ साथ एडजस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो उनको लगता है AI सीख रही है, लेकिन असल में वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट अब्जॉर्ब कर रही होती है. रियलिटी ये है, कॉन्टेक्स्ट चेंज होते ही मॉडल का बिहेवियर म्यूटेट कर सकता है, कॉन्ट्राडिक्शंस आ सकती हैं और प्रीवियस सेफ्टी गाइडलाइंस ओवरराइड हो सकती हैं.
1: बिल्कुल.
0: इसकी वजह से इल्यूजन क्रिएट होती है कि मॉडल कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है, जबकि एक्चुअली वो बहुत ब्रिटल और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है. तो हमारी अपनी ये अवेयरनेस, क्योंकि वो हमें प्रॉम्प्ट के साथ साथ हर प्रॉम्प्ट, अगर हम सेम चैट में सेम प्रॉम्प्ट को बार बार दे रहे हैं और उससे मजीद सवाल कर रहे हैं, तो हमें उसका रिस्पांस बेहतर नज़र आता है. वही हमें ये आइडिया देती है कि ये साथ साथ सीख रहा है, जबकि वो असल में सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपना रिस्पांस बेहतर कर रहा होता है, जबकि वो सीख नहीं रहा होता. तो ये एक हमारी मिसकंसेप्शन है, जिसके बारे में हमारी क्लियरिटी होना ज़रूरी है कि वो पहले से ट्रेन है, वो साथ साथ नहीं सीखता.
1: बिल्कुल. रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट में AI इवैल्यूएशन क्यों फेल होता है? इंडस्ट्रियल और एंटरप्राइजेस केस इस बारे में क्या कहते हैं?
0: AI जब लैब टेस्ट पास करके रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय होती है, तो कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सामने आ सकती है, जो तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है. सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट है हमारे पास. AI जिस क्लीन और प्रेडिक्टेबल डाटा पर टेस्ट होती है, रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है. एजुकेशनल चैटबोर्ड्स रियल स्टूडेंट क्यूरीज को समझ नहीं पाते, बैंकिंग चैटबोर्ड्स एज केस सिनेरियोज हैंडल नहीं कर पाते, और HR टूल कल्चरल डिफरेंसेस को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं. दूसरा, हमारे पास यूजर बिहेवियर वेरिएबिलिटी होती है, जहाँ रियल यूजर क्रिएटिव होते हैं और AI को ट्रिक करते हैं, एज केसेस ट्राई करते हैं, सेफ्टी बायपास प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं या सार्केस्टिक टोन यूज करते हैं, जो मॉडल के लिए अनएक्सपेक्टेड होता है. तीसरा, हमारे पास मल्टी स्टेक होल्डर प्रेशर भी आ सकता है, जहाँ इंडस्ट्रियल AI को कस्टमर की एक्सपेक्टेशन या लीगल कंप्लायंस, कॉर्पोरेट पॉलिसीज, एथिकल गाइडलाइंस या टाइम प्रेशर और बिजनेस के KPI के बीच काम करना होता है. इन प्रेशर के होते हुए AI सेफ्टी डिसीजंस को कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, यानी AI लैब में सेफ होती है लेकिन इंडस्ट्री में रिस्की हो जाती है, और ये मिसमैच सेफ्टी इल्यूजन का इंडस्ट्रियल वर्जन बन जाती है. तो हमारे पास मेन इशू ये बनता है कि हम एक लिमिटेड सिनेरियो पे ऑलरेडी मॉडल को ट्रेन कर चुके होते हैं, बट क्योंकि हमारा यूजर वेरिएबल भी हो सकता है, क्रिएटिव भी हो सकता है और वो ट्रिकी भी हो सकता है, और समटाइम्स सार्केस्टिक होने की वजह से वो मॉडल को कुछ इस तरह की प्रॉम्प्ट देता है कि जो बिहेवियर उससे एक्सपेक्टेड था वो परफॉर्म नहीं कर पाती. और जब हम इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडस्ट्री में हमारे पास कॉस्ट और मनी और रेपुटेशन साथ साथ एसोसिएटेड होते हैं उसकी सक्सेसफुल होने के लिए, जबकि AI इन चीज़ों से उस तरह से अवेयर नहीं होती. वो एक रिस्पांस तो जनरेट करता है, बट आपकी प्रॉम्प्ट जो है अनक्लियर होते हुए वो आपको उतना गाइड नहीं कर पाता, या आपकी रिलायंस आपको एक मिसलीडिंग फैक्टर की तरफ लेके जा सकती है.
1: डॉक्टर साहिबा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त लिमिटेड है, फ्यूचर में AI एवेल्यूएशन किस तरह काम करेगी या किस तरह इसके ऊपर काम किया जाएगा कि सेफ्टी इल्यूजंस को ओवरकम किया जा सके?
0: फ्यूचर AI एवेल्यूएशन बहुत डायनामिक और मल्टीलेयर होगा. अभी हमारे पास जो एवेल्यूएशन है वो उतनी ट्रिकी नहीं है, या कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आने वाले दौर में बिहेवियर एवेल्यूएशन भी होगी, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ऑफ आउटपुट्स भी होगी, सिनेरियो ड्रिवन टेस्टिंग भी होगी, फिर AB टेस्टिंग अक्रॉस ग्लोबल डाटा सेट भी हम करेंगे, जहाँ पे हम दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग सैम्पल्स को टेस्ट करते हैं सेम प्रॉब्लम के लिए. फिर हमारे पास पर्सनलाइज सेफ्टी लेयर्स भी होंगी, कि अगर कोई कस्टमाइज या पर्सनलाइज्ड वे में AI को यूज़ करना चाह रहा है तो उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं. फिर इसके साथ साथ कंटिन्यूस लर्निंग बेस्ड एवेल्यूएशन भी होंगी, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हम AI की असेसमेंट जिस तरह से कर रहे हैं उसी हिसाब से वो हमारे पास रियल टाइम में

0: रिस्पॉन्स जनरेट करे। और AI का इम्तहान सिर्फ एक सिंगल टेस्ट नहीं होगा। अगर हम AI को वैल्यूएट कर रहे हैं और अभी हम एक स्टैटिक टेस्ट हमने क्रिएट कर लिया है, तो तब हमारे पास फ्यूचर में मल्टीपल सिनेरियोज, मल्टीपल कस्टमाइज वेज होंगे, टेक्निक्स होंगे जो कि उसको टेस्ट करने के लिए यूज़ की जा रही होंगी। और मल्टी लेयर्ड असेसमेंट साइकिल जो है वो उसकी रियल वर्ल्ड कम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प भी करेगा और हमें वो स्कोर बताएगा जो कि सम हाउ रियल सिनेरियो के साथ मैच कर सकता हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए तो टेस्टिंग में तो AI अभी भी टॉप स्कोर पे होती है, तो वो रियल वर्ल्ड में लॉन्च की जाती है और लोगों के लिए यूज के लिए प्रोवाइड की जाती है। मसला तो सिंपल ये आ रहा है कि जो टेस्ट उसने लैब में परफॉर्म किए और उन पे जो उसका स्कोर आया, वो सेम स्कोर या वो सेम एक्सपेक्टेशन हम रियल वर्ल्ड में नहीं देख पा रहे। और अगर मेरे पास यही टेस्ट, जैसे मैंने मेंशन किया कि मल्टी लेयर या डायनामिक होंगे और हमारे पास कस्टमाइज्ड होंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये तो नहीं कि 100%, बट ये काफ़ी हद तक हमें एक रियलिटी या रियल बेस्ड सिनेरियोज जो हमारे हैं, रियलिटी बेस्ड सिनेरियोज हैं, उनसे रेलिवेंट हमें आंसर मिलेगा और हम रिलाई सम हाउ कर सकेंगे एटलीस्ट फैक्चुअल करेक्टनेस के लिए।
1: बिल्कुल लिसनर्स, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात आ चुके हैं। हम अपनी ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर गुलशन सलीम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
1: जज़ाकर। लिसनर्स, आज के सेशन से हमें ये समझ आया कि AI टेस्ट हमेशा ट्रू पिक्चर नहीं दिखाते, सेफ्टी इल्यूजन रियल है, एवेल्युएशन फ्रेमवर्क्स को इवॉल्व होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल यूज बहुत जरूरी है। लिसनर्स, AI एक पावरफुल टूल है, मगर पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हम सबका फर्ज है कि टेक्नोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, समझकर यूज करें, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ अप्लाई करें। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहें FM 92.6 रेसिपी की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: जी सामिन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेजबान अली अशरफ, और आप इसे सुनते हैं FM 92.6 पर, जिसकी ऐप भी है। आप इसे एंड्रॉयड के जितनी भी ऐप्स हैं उस पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी iOS है उसके ऊपर भी ऐप अवेलेबल है, और साथ साथ आप इसे वेब रिसोर्सेज हैं उन पर भी इस हमारे प्रोग्राम उसको सुन सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली साजिद, और बड़ी ही इंस्पिरेशनल किस्म की टॉक है, और जब भी मैं इनके साथ मिलता हूँ, उनके साथ गपशप लगाता हूँ, मैं बड़ा मोटिवेटेड फील करता हूँ। और जब आज ये तशरीफ लाए थे तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपके अंदर एक टीनेजर बॉय है जो चैन से बैठता नहीं, नए आइडियाज पे काम करता रहता है, और सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए डॉक्टर अली साजिद को हमेशा मैंने सरगर्म पाया। बड़ी ही जबरदस्त गुफ्तगू चल रही थी चेंज मैनेजमेंट के ऊपर। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, मुल्कों की एग्जांपल भी दी कि ये इस मुल्क इस तरह से करके चेंज ले आए हैं। हम कैसे चेंज ला सकते हैं? दफातर में देखा हमने, हमारे लोग बड़े रुल रहे होते हैं और काम उनके हो नहीं रहे होते, या दफातर में उस तरह की एफिशिएंसी नहीं आ रही होती। तो क्या स्टेप हैं ऐसे जिनको हम ले सकें ताकि जो हमारे दफ्तरी निज़ाम है उसमें बेहतरी आ सके?
2: अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और इसको एक दो मिनट में जवाब देना बड़ा मुश्किल है। मैं दो तीन मिनट लूंगा अपने इंटरनेशनल एक्सपोजर को एक्सप्लेन करूंगा। मुझे वर्ल्ड बैंक में काम करने का मौका मिला, UN की असाइनमेंट्स मैंने न्यूयॉर्क में की, और चार पांच अमेरिकन स्टूडेंट ने पढ़ाया, और मैंने उनका सिस्टम गोरों का बड़ा अंदर से देखा है, जो आम पाकिस्तानी को PhD के दरमियान में मौका नहीं मिलता। मैं 8-9 साल जब वाशिंगटन में रहा तो 5 यूनिवर्सिटियों को मैं टीचिंग की, और मैंने ह्यूमन इंटरेक्शन से ऑब्जर्व किया कि वो कौम तरक्की क्यों कर रही है। हमारा ख्याल है कि वो कौम इसलिए तरक्की कर रही है कि उनके पास वसाइल है। वसाइल इज नॉट द इशू। जीरो पानी का एक कतरा नहीं आता सिंगापुर में, वो भी तरक्की कर गया। उन्होंने कल्चर पे इन्वेस्ट किया, वर्क कल्चर पे सबसे बड़ी चीज है। और मैं बड़े फखर से एज ए मुसलमान इस अमर का इदा करता हूँ, इस बात का इजहार करने में फखर महसूस करता हूँ कि उन्होंने मसावत महमदी की स्पिरिट को इम्बेड कर दिया दफ्तरों में। पहली बात तो ये है, कोई छोटा बंदा नीला पीला काला मजहब रंग अकीदे की बेस पे तख्सीस जुर्म है, इखलाकी जुर्म है, कानूनी भी जुर्म है, इखलाकी जुर्म।
1: बिल्कुल ठीक,
2: आप अकीदे की बेस पे आपको रोका नहीं जा सकता, रंग की बेस पे या किसी भी चीज पे, एज लॉन्ग एज आप कानून और उसके मुताबिक सोसाइटल नॉर्म के मुताबिक काम कर रहे हैं। पहली चीज तो उन्होंने ये इम्बेड कर दी वेस्ट ने अपने अंदर चेंज में। और मजे की बात यह है, 100 साल पहले USA में भी ये नहीं था। जो ब्लैक अमेरिकन थे उनका यूनिवर्सिटी में दाखिला मना था, उनका बसों में दाखिला मना था, होटलों में दाखिला मना था, रेस्टोरेंट्स में भी नहीं जा सकते थे 100 साल पहले काले। वोट देना तो बड़ी बात है, यूनिवर्सिटी में अलग उनका कमरा होता था, कुर्सी पे कोई कभी खाल खाल को मिल गया तो मिल गया, चुप के पढ़ते थे, दरवाजों से झांक के पढ़ते थे। कालों की इजाजत नहीं थी ब्लैक अमेरिकन को, जिसको अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं। उन्होंने देखा इससे तो मुल्क टूट जाएगा, उन्होंने कुछ अफर्मेटिव एक्शंस लिए, कुछ बड़े पॉजिटिव एक्शन लिए, और ये तकसीम और तखसीस खत्म कर दी, और मसावत महमदी को ट्रू सेंस में उन्होंने स्टडी किया या जो भी किया उसको इम्प्लीमेंट कर।
1: बिल्कुल ठीक।
2: अब रंग नस्ल अकीदे और जिंस की बुनियाद पे तखसीस उस सोसाइटी में खत्म हो गई है तकरीबन। अब जितना मर्जी कहें जी वो अंदर से करते हैं, कानून को नहीं करने तक, उन्होंने कानून साजी कर
1: सिस्टम से निकल गया।
2: हाँ, सिस्टम से निकाल दिया, कोई डंडी मारे तो उसको ट्रंप की तरह अंदर कर देते हैं, ट्रंप अंदर हो रहा है या चांसेस है उसके। पहले काम तो उन्होंने ये किया ना कि दूसरा था कानून एहतराम, नो बॉडीज अबव द लॉ, और तीसरा उन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए हर उन्होंने शोबा जिंदगी में इंटरवेंशन की, और टेक्नोलॉजी को एज एनेबलर किया लोगों के लिए आसानियां पैदा करने। मसलन मैं आज से 28 साल पहले जब वाशिंगटन था, हर काम टेलीफोन पे हो जाता था, आपको यकीन नहीं आएगा, अब ईमेल पे हो जाता है या ऐप पे हो जाता है। पाकिस्तान में भी कुछ चीजें ऐसी आई हैं ऐप्स की वजह से कि आप टिकट बुक करा लेते हैं, बिल पे कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन सरकारी दफातर में जब तक 10 चक्कर में आप रुलना लें और जलीलो खार ना हो लें सरकार के अंदर, वो काम नहीं होता। उन्होंने, आप हैरान होंगे कि मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान में मेरे पास नहीं था, अमेरिका में 30 मिनट्स में ड्राइविंग लाइसेंस मुझे मिल गया। उन्होंने प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया और उसमें ट्रांसपेरेंसी डाल दी ताकि रिश्वत ना आ सके। जब प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी आ जाती है तो स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ने लग जाती है।
1: बिल्कुल ठीक।
2: अब मैं 17वें ग्रेड से यहाँ गया था और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े लंबे प्रोसेस थे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के। वहाँ गया हूँ एज स्टूडेंट, उन्होंने 30 मिनट्स में $20 लिए, मेरा टेस्ट लिया कंप्यूटर ने, आई सेट चेक की, ड्राइविंग का एक टेस्ट लिया, उन्होंने कहा बिस्मिल्ला बैठ जाओ जी, वो नहीं कहता आजा बैठ जाओ साइकिल पे, उन्होंने साइकिल पे बिठा दिया, मुझे लाइसेंस दे दिया। अब ये प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन की टू सक्सेस है यूएस या वेस्ट की। हम प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स रखते हैं, आज से 30 साल पहले यूएन के एक बहुत बड़े ऑफिशियल से मैं न्यूयॉर्क में मिला, तो मैंने कहा यहाँ हर चीज 30 मिनट्स में मिल जाती है, आधे घंटे में, या टेलीफोन पे मिल जाती है, आप क्यों नहीं सिंप्लीफाई करते, क्यों हर चीज के लिए आप डोमिसाइल, अगर आपने लाहौर का बनवाना हो तो उमरे खजर चाहिए, सबरे यूब चाहिए,
1: बिल्कुल,
2: या फिर 5,000 का नोट, इसके अलावा तीसरा हल ही कोई नहीं। अगर हम प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं, डोमिसाइल आइडली मुझे घर बैठे बैठे मिल जाना चाहिए, नहीं मिलता, मैं लाहौर में 50 साल से ले रहा हूँ, डोमिसाइल नहीं मिल सकता जब तक मैं 6 दिन खार ना हूँ या एजेंटों को पैसे ना दूँ। तो ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। दूसरा, प्रोसेस को डुप्लीकेशन खत्म कर दे। अब जब आईडी कार्ड आ गया तो डोमिसाइल की जरूरत नहीं, ये प्रोसेस डुप्लीकेशन ने भी हमारी, अब इन्होंने वेस्ट ने साथ साथ पब्लिक कन्वीनियंस को चेंज मैनेजमेंट का नाम पब्लिक कन्वीनियंस दे दिया और इम्बेड कर दिया सोसाइटी के हर से में। नतीजा क्या हुआ कि लोगों की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई, पूरा पूरा दिन। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी, उनकी अदालतों में चेंज मैनेजमेंट कैसे आया, उनकी लीडरशिप ने इम्बेड किया। अदालतों के रात 8 बजे तक खुली रखते हैं, अगर आप दिन में अदालत में जा सकते रात को 8 बजे चले जाए, संडे को चले जाए, सैटरडे को चले जाए, ताकि आपको दफ्तर में छुट्टी ना लेनी पड़े। दफ्तर में छुट्टी एक प्रोफेसर लेता है तो 4 वाइवे मिस हो जाते हैं। एक ब्रेन सर्जन अदालत में पेशी के लिए जाता है दिन में, तो पीछे 4 ब्रेन सर्जरी के बंदे मर जाते हैं।
1: ऐसे ही है,
2: तो क्यों ना हम सिंप्लीफाई करें और पब्लिक कन्वीनियंस को हर प्रोसेस के अंदर इम्बेड करते हैं। अगर प्रोसेस के अंदर पब्लिक कन्वीनियंस और पब्लिक कम्फर्ट होगा तो आपको मदीना की रियासत जाने का पहला स्टेप होगा। मदीना की रियासत महज मजहबी अकायद की तकरार का नाम नहीं है, लोगों के लिए कंफर्ट, कन्वीनियंस और आसानियां पैदा करने का नाम है, जो शफाक मत कहते कहते खत्म हो गए कि आसानियां पैदा करो। अब वेस्ट ने आसानियां पैदा कर दी मैनेजमेंट ऑफ चेंज के नाम पे, और एक दरमंदा शख्स को, एक मरे हुए शख्स को, एक बुढ़ी औरत को वो सोशल जस्टिस दे दिया जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को मिल सकता है। ये कमाल है, इसलिए लोग वेस्ट में जाना चाहते हैं। महज डॉलर का मना नहीं मकसद सबका जाना, वो इसलिए भी जाते हैं कि एक वहाँ पे एक एनवायरनमेंट ऐसा बन गया जहाँ इज्जत नफ्स का तहफ्फुज़ मुमकिन है। तो चेंज में उन्होंने इज्जत नफ्स का तहफ्फुज़ भी डाल दिया, टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन अकेले नहीं की, उन्होंने इज्जत नफ्स, सेल्फ एस्टीम, केयर, लव, रिस्पेक्ट और खौफ खुदा, इंसान दोस्ती, गरीब परवरी, हर चीज को एम्बेड कर दिया। तभी तो लोग पागल होकर जाते हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ जी, वो गरीब सी, आप हैरान होंगे। मैं वाशिंगटन में जब 6-7 साल हो गए मुझे रहते हुए, तो एक लाहौर से पाकिस्तानी मेरा दोस्त आया, गवर्नमेंट ऑफिशियल, मेरे घर ठहरा हुआ था। मैंने कहा तुम आए हो पाकिस्तान एक हफ्ते रहे हो, क्या नजर आया वाशिंगटन और इस्लामाबाद में फर्क? कहते वाशिंगटन में एक डिश वॉशर की बेटी को वही सोशल प्रोटेक्शन हासिल है जो प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए की बेटी को सोशल प्रोटेक्शन और सहूलतें और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक्सेस हासिल है। ये उसने तजिए एक लाइन में कर दिया। अब वेस्ट ने इस स्टेज पे आने में 150 साल लगाया है, हमें 75 साल हो गए हैं, लेकिन जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में आप दे देना कि जी LDA आपको एक हफ्ते में मकान का नक्शा बना देगी ऐप के जरिए, नहीं बन सकता, उसकी वजह पता है आपको, मैं नाम भी नहीं ले सकता, क्यों नहीं बनता। अच्छा, इसी तरह आपने पंजाब यूनिवर्सिटी या UET से डिग्री लेनी है अपनी, तो 10 चक्कर या 4 चक्कर या 5 चक्कर लगेंगे, 6 जगह फॉर्म बयान अल्फी जमा कराएंगे तो एक सर्टिफिकेट आप देंगे जी गुम गई है। अगर आपकी डिग्री गुम गई आप मुजरिम है, कि गुमाई क्यों है, पुलिस से थाने की रिपोर्ट, बयान हल्फी, उसके साइन, शनाख्ती कार्ड, फीस और तनख्वाह या फीस एक खास जगह जमा करानी है, उसके अलावा कहीं जमा नहीं करा सकते। ये पूरी दुनिया एप ड्रिवन पे आ गई है। हम अभी तक 1860 का उसी पे लेके बैठे हुए हैं, पंजाब पुलिस का एक्ट, हमने उसको चेंज नहीं किया। इसी तरह हमने डोमिसाइल के कल्चर को भी चेंज नहीं किया। ये चीजें रिडंडेंट हो गई हैं। वो इकबाल एक शेर में कहता है, जमाना आया है बेहजाबी का, दीदारे यार आम होगा। दीदारे यार बसले महबूब नहीं है, दीदारे यार कन्वीनियंस और कम्फर्ट है। ये सिंबॉलिकली यूज हो रहा है, कंफर्ट और कन्वीनियंस क्या है कि मुझे पार्किंग में आधा घंटा ना लगाना पड़े। अब उन्होंने एक काम और वेस्ट ने किया, उन्होंने मैं तोड़ दी। ये मेरे साथ वाकया हुआ है, मैं Washington DC में जब काम करता था तो वॉशिंगटन के साथ दरिया है और मैं वर्जीनिया में रहता था, दरमियान में जो हद फासिल है वो दरिया था। अब वॉशिंगटन छोटा सा शहर है, उसमें पार्किंग बहुत महंगी है, एक दिन की पार्किंग $20-30 की आज से 30 साल पहले थी, अगर आप लेते हैं तो। मैं वॉशिंगटन से पहले पेंटागॉन है, पेंटागॉन की पार्किंग थी अपनी 40-50 हजार गाड़ियों की। अब वो GHQ के बराबर है। उन्होंने कहा जी पेंटागॉन में हर अमेरिकन, हर आउटसाइडर गाड़ी पार्क कर सकता है। तो मैं अपनी गाड़ी पेंटागॉन पार्क करता था, वहां से अंडरग्राउंड मेट्रो ली और $2 में $1 में अपने दफ्तर पहुंच के मेरी पार्किंग की हासिल खत्म हो गई। अब मैं हैरान हो गया कि उसमें ये नहीं था कि 1-star 2-star 3-star की पार्किंग दफ्तर के साथ है। 40,000 गाड़ियां, जो पहले आएगा वो गाड़ी उसकी वहां खड़ी हो जाएगी नियरेस्ट प्लेस पे, और जो लेट आएगा बेशक वो जो मर्जी हो, 30 मरखा हो, फन्ने खां हो, 22वां ग्रेड हो, वो अपनी गाड़ी आखिर में खड़ी करेगा जहां पे उसको मेरिट पे आती है, लेट आने की सजा मिलेगी उसको। अफसरी का भरम उन्होंने खत्म कर दिया, मैम मार दी। जो बुल्ले शाह नहीं कहता पहले अपना मैम मुका, उन्होंने मैं मुका दी। अब मेरे सामने था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ ऑर्डिनरी थर्ड वर्ल्ड का, अगर मैं जल्दी आ गया तो मुझे पार्किंग मिलेगी, वरना एक मील दूर पार्क करके एक मील पैदल चल के आऊंगा मैं। ये जो मुसावत है महमदी का कल्चर उन्होंने चेंज मैनेजमेंट के तनाजुर में एम्बेड किया तो मुल्क तरक्की करने लग गया।
1: बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी जो है ना एनर्जाइजर एक किस्म का था ये आपकी जो आपने जिस तरह इसको कम अल्फाज में बहुत सारी चीज़ों को आपने अहाता कर दिया। हम इसको सिलसिले को जारी रखेंगे, अभी वक्त है म्यूज़िक ब्रेक का, और म्यूज़िक ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो इसी की मुख्तलिफ जो डायमेंशन है उसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ रहिए।

0: 6, बोरियत को भगा दो।
1: जी सामईन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेज़बान अली अशरफ, और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली साजिद। और डॉक्टर साहब से जब बात हो रही है तो डॉक्टर साहब की कोई बात ऐसे नहीं है जो थ्रेटिकली हो, उसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं और हमें एक गाइडलाइन दे रहे हैं कि किस तरह से हम उनकी चीज़ों को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अपने सिस्टम में इम्बेड कर सकते हैं। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो मुझे अभी तक डॉक्टर साहब से बात करके पता लगा है कि बिल्कुल तरीके हैं, सिर्फ एक विल चाहिए इस, और विल टू चेंज है और या विल टू इम्प्लीमेंट है। अगर हम इस विल को अपने अंदर ले आएंगे तो हमारे सिस्टम भी दूसरे जो अच्छे सिस्टम्स हैं उनकी तरह से हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपने बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद रखी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेस स्कूल हैं वो आपके क्रेडिट पर ही हैं, जिसमें नस्ट है और सीज है, केस है सॉरी, और यूईटी का बिजनेस स्कूल है, एलएसएम है और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आपने क्या इसमें कोशिश की चेंज लाने की, जो चेंज मैनेजमेंट आपका एरिया है, क्या स्ट्रेटजीज आपने वहाँ पर इम्प्लीमेंट की और उनके क्या नतायज मुरतब हुए?
2: बहुत शुक्रिया जी। मैं चेंज मैनेजमेंट का प्रोफेसर नहीं हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ, अल्लाह का फजल है
1: जी।
2: मुझे 19वें 20वें 21वें ग्रेड में जब इख्तियारात मिले तो उस वक्त पाकिस्तान का या डेवलपिंग नेशंस का एक शार है कि सरिया डाल के तो के दफ्तर में बंद हो जाओ और एक पीए बार बैठा दो, साहब का मूड ऑफ है। मैंने वो कल्चर खत्म कर दिया, मैंने पीए खत्म कर दिया, कमरा खोल दिया और अपना ऑफिस था उसमें जितनी बड़ी बड़ी सहूलतें थी, मैंने कहा स्टूडेंट्स के लिए बड़े बड़े एलईडी एलसीडी जो भी थी 50 इंच की या 70 इंच की या 200 इंच की, मैंने कहा पब्लिक के लिए। दफ्तर को मैंने एक वो बना दिया, क्या होता है जनाब, आपको सिविल सेक्रेटेरिएट नहीं होता, पब्लिक सिविल सेक्रेटेरिएट ऑफ एनी पर्सन। मैंने कहा आई एम नॉट अ डायरेक्टर, आई एम नॉट अ प्रोफेसर, आई एम सर्विस प्रोवाइडर, मेरा काम आपको सहूलतें देना, बच्चों को मैंने ये कहा। और जात की नफी करने के लिए हमने वो बड़े बड़े वो जो थे दरवाजों पे जो चौबदार खड़े होते थे, मुगले आजम हटो बच्चों की सदा आ रही है दरवाजे पे खोल रहे, खूब भाग के

0: पे पढ़ी लिखी मजहब सोसाइटी प्रोटेस्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन उनका वो एक सवाल निशान जरूर कर सकती है, ये क्यों हो रहा है। तो चेंज इज नॉट व्हाट यू कॉल सेरेमोनियल, इट इज नॉट आर्टिफिशियल, इट इज रियल टाइम दिलो नगाह की चेंज और कल्बो नजर को शिकार करना चेंज का नाम।
1: डॉक्टर साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि चेंज इज नॉट सेरेमोनियल, चेंज का अपना एक डायनेमिक्स है और वो हमारे यहाँ जब भी चेंज के नाम पर जो भी बात हुई है वो सेरेमोनियल ही रही है। आपने बड़ा अच्छा इसको कॉम्प्रिहेंड किया।
0: काटने का नाम चेंज नहीं है,
1: बिल्कुल
0: इदारे बनाने का नाम चेंज नहीं है,
1: बिल्कुल सही। हम जा रहे हैं प्रोग्राम के बिल्कुल अख्तिताम पे, म्यूजिक ब्रेक है और जब ब्रेक से वापस आएंगे डॉक्टर साहब आपसे हम चाहेंगे कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए आप कोई पैगाम दें, लेकिन ये म्यूजिक ब्रेक लेते हैं उसके बाद आते हैं और फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.
3: In sadaye Lahore ast, in sadaye UCP ast. Lutfan goosh bedahid FM 92.6 jahane UCP.

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतल्लिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 0423111877 पर राब्ता कीजिए।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हों मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। प्रोग्राम नकले अदब में मैं आपको दोबारा खुश आमदीद कहती हूँ। हमारे साथ मौजूद है सामिया। हमने लिटरेचर पर बात की, हमने बुक फेयर्स पर बात की। सामिया, आपने सबसे पहले शुरू में बताया कि आपने CSS के अटेम्प्ट भी दिए, PMS के अटेम्प्ट भी दिए, तो मुझे मालूम है उसके लिए कितना किताबों से आशना होना ज़रूरी होता है। उसमें हर किस्म की किताब आ जाती है, करंट अफेयर्स हो गए, लिटरेचर हो गया, फिलोसफी हो गई, हर किस्म का। और आपने बताया कि आपका कायदे आज़म लाइब्रेरी ने बहुत आपका रास्ता हमवार किया उसके लिए, तो आप मुझे सबसे पहले तो थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताएं और बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक्स आप प्रेफर करेंगी हमारे सामईन को, कि अगर उन्होंने CSS के अटेम्प्ट देनी हो तो कितना ज़रूरी है उनके लिए लिटरेचर से या किताबों से करीब होना।
2: ठीक है, सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं कायदे आज़म लाइब्रेरी से। अच्छा, सबसे पहले लाइब्रेरी इज़ अ ब्लेसिंग। अगर आपको ख़ुद से तैयारी करनी है या आपको 5 से 6 महीने किसी भी चीज़ पर फोकस्ड होकर तैयारी करनी है। दूसरी बात करते हैं उस पर CSS की तैयारी पर, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप इतने फेड अप हो जाते हो इतना पढ़ के, क्योंकि 12 सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट आपको इस तरह से कवर करने हैं कि आप कम्पीट कर सकें। तो ऑब्वियसली किसी इंसान का मैथ अच्छा होगा, किसी का साइंस अच्छी होगी, किसी की इंग्लिश अच्छी होगी। ज़रूरी नहीं है सबके ये 12 के 12 सब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे हों। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कुछ सब्जेक्ट्स में तो आपका इंटरेस्ट होगा, कुछ में नहीं होगा। आप बहुत फेडअप हो जाएंगे कि मैं यार क्या तैयारी कर रहा हूँ, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मतलब कुछ नज़र भी नहीं आ रहा कि पता नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। तो देर आर मिलियंस ऑफ थॉट्स, ठीक है, उनको पहले आपको ओवरकम करना आना चाहिए। दूसरी बात, लाइब्रेरी जाने का ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर ना बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट्स आए होते हैं। जब आप उनको देखते हैं ना, तो फिर जो आप डीमोटिवेट हो रहे होते हैं और आपने जो ईजी लिया होता है बाज़ूकात, आप ईजी ले लेते हैं कि अच्छा ये तो होगा, फिर आप वो ईजी नहीं लेते, फिर आप भी फोकस्ड, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका कंपटीशन जो है वो इन लोगों से है जो आपसे बेहतर पढ़ रहे हैं, या जो आपके नेक्स्ट आपके टेबल पे है वो बंदा देखो कितनी तैयारी कर रहा है, वो नोट्स भी बना रहा है, वो ये भी रेफरेंस भी यूज़ कर रहा है वो। तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, फिर प्लस आपको एक वो जो माहौल चाहिए होता है पढ़ने वाला, जिसमें वाइब्स आए, हर बंदा पढ़ रहा हो, कोई और बात ना करो जिसकी वजह से आप डिट्रैक हो जाएं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं बुक्स में। अच्छा, CSS की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो इसमें तो जितना नॉलेज हो उतना कम है, ठीक है। आपका नॉलेज ज़ाया नहीं होता CSS में, आप वो ऐसे में लिखोगे नहीं तो आप करंट अफेयर से कोई रेफरेंस देके आप हिस्ट्री से जोड़ोगे, उसमें आपका नॉलेज कभी भी ज़ाया नहीं होगा। और उसमें ये भी नहीं है कि अगर जो आपने पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ा है वो सिर्फ आप पॉलिटिकल साइंस में ही अप्लाई कर सकते हो, वो आप अपने ऐसे में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आप पाकिस्तान हिस्ट्री से अगर कुछ आ जाए पॉलिटिक्स से आप उसमें भी अप्लाई करें। सो दीज आर वेरी ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसके लिए अब हम लिटरेचर पे आते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि अब जो CSS है इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, बट स्टिल इट इज़ ऑल अबाउट बैकग्राउंड नॉलेज ऑल्सो,
1: ठीक है।
2: आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज ना हो उस चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस में हम फिलॉसफीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, एरिस्टोटल की पढ़ते हैं, हम मॉन्टेस्क्यू की पढ़ते हैं, रूसो की पढ़ते हैं और प्लाटो की पढ़ते हैं, इस तरह से। अब ये फिलॉसफीज़ की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो महदूद नहीं है, वो आपके किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी वक्त काम आएगी,
1: ठीक है।
2: दूसरी बात, अगर आप एक और एग्जांपल ले लें, कॉन्स्टिट्यूशन की ले लें, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको पता है हमारे पास 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट अमेंडमेंट क्यों हुई, सेकंड अमेंडमेंट क्यों हुई, आपको हिस्ट्री तक आने के लिए बैकग्राउंड नॉलेज। और जब आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होगा तो आप करंट अफेयर पर भी बात कर सकेंगे ना, कि इस वक्त जो चल रहा है वो उस वक्त क्या हुआ था जो इस वक्त ऐसा चल रहा है, या अब हमें क्या चीज़ चेंज करनी है जो फ्यूचर। सो बैकग्राउंड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट, और वो आपको जो क्रेडिबल नॉलेज है वो बुक से ही मिलती है। अभी भी इस इंटरनेट के दौर में भी नो डाउट बहुत अच्छे यूट्यूब्स पे

आपने हमें वक्त दिया, और चूंकि हमारे शो की रिवायत है कि हम अपने शो का इख्तिताम कुछ अशआर से करते हैं, तो आज फैज़ अहमद फैज़ के कुछ अशआर हैं। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। वीरा है मैं कदा, खमो सागर उदास हैं, तुम क्या गए के रूठ गए दिन बहार के। उम्मीद करती हूँ आप सबको शो पसंद आया होगा। आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक पेज पर, इंस्टा पेज पे यूसीपी रेडियो एफएम 92.6 के। अपनी मेज़बान थे ज़ीन अली को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ। खुदा हाफिज़।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: Alzheimer is a progressive brain disease which rapidly affects the nervous cells and senses, causing the improper function of human body. Usually aged people have more possible chances to get affected by this disease. According to an estimation, there are approximately 1 million Alzheimer patients in Pakistan. Alzheimer is a challenge for medical science as its cure or treatment is still not discovered. Only prevention to its causes can stop this disease from spreading. Take care of your elders and save them from Alzheimer. For more information, email Alzheimer Care Society on info@alz.org.pk or call us on 0423 111 1177.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। PTA।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 90।

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इतला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर रابطہ करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: कंट्रोल, आवाज आ रही है? सच बोलूं, दिल भी थोड़ा कांप रहा है।
1: आवाज भी और
2: धड़कन भी सन्न हो गया।
0: The nets fly over and out.

ساعت امر شعور ذات راستہ بنانے دے.

तक। जिंदगी को जीने से जिंदगी को पाने तक। उस कबा के उठने से उस कबा के खुलने तक। आंख के तमाजत से होंठ की हरारत तक। गाल पे लगा गाजा होंठ पे लगी लाली खुद ब खुद पिघलने दे। खुद ब खुद पिघलने से खुद ब खुद पिघलने तक। खुद ब खुद पिघलने दे। हाथ की लकीरों से रत जगों के तीरों से और आगे जाने दे। और आगे जाने से और आगे जाने दे।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस

महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
2: आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार उन 10 ममालिक में होता है जहां पेट के कीड़े बहुत आम हैं। एक सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 22 अजला में तकरीबन 20% से ये शरह ज्यादा है।
3: वर्म इन्फेक्शंस बच्चों में गजाइत की कमी का बायस बनते हैं और उनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा में खलल पैदा करते हैं।
4: इस बीमारी की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमत ने महकमा सेहत और एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तावन से एक मुहिम प्लान की है जो इंशाल्लाह अक्टूबर के महीने में की जाएगी।
5: खुशी की बात यह है कि हमारे वालिदैन को इस बीमारी के बारे में मालूमात भी हैं। वो हमारे पास ओपीडीज में आके पेट के जो कीड़ों के बारे में जो दवाई होती है उसके बारे में खुद वो कहते हैं, इस्तेदा करते हैं कि मेरे बच्चे को पेट के कीड़े हैं और सारे जो है सिम्टम्स अलामात बता देते हैं।
6: पाकिस्तान डीवर्म इनिशिएटिव का साथ दीजिए, इसमें बच्चों को एक टैबलेट दी जाती है जो कि WHO और ड्राप से अप्रूव्ड है।
7: बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, आने वाली नस्लें हमें हमारे वतन को और इस दुनिया को संभालने के लिए खड़ी होगी, लेकिन तब जब हम उनकी सेहत का और उनकी जिंदगी का सही फैसला करेंगे। सो जब भी आपको कहीं मौका मिले, आपके स्कूल्स में या कहीं पे भी आपके महल्ले में जब भी आपको डीवर्मिंग की दवाई देने के लिए आए आपके बच्चों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग ताउन कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है।
4: पेट के कीड़े दूर, सेहत भरपूर।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुर और ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आमना महमूद, मुखातिब हूं आपसे FM 92.6 UCP की दुनिया से। लिसनर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी फास्ट पेस से इवॉल्व हो रही है, AI, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, पर हम सब इन चेंजेस को अपनी ज़िंदगी में देख भी रहे हैं और एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फाउंडेशन लेवल इशू को एड्रेस करता है। हम बात करने जा रहे हैं एक्सपोजिंग द सेफ्टी इल्यूजन इन AI एवेल्यूएशन, यानी जो AI हम रोज यूज करते हैं, क्या वे असल में उतनी सेफ, एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी होती है जितना हमें टेस्ट दिखाते हैं, या फिर टेस्ट खुद एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। हमारे साथ इस अहम गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गुलशन सलीम, जो UCP के FOIT एंड CS के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और AI सेफ्टी, मशीन लर्निंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की रिसर्च पर काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा।
2: वालेकुम अस्सलाम,
1: कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र।
1: बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला।
2: शुक्रिया इनवाइट करने के लिए।
1: वक्त जाए के बगैर हम अपने सवालात की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि AI एवेल्यूएशन होता क्या है?
2: AI एवेल्यूएशन बेसिकली वो प्रोसेस है जहां हम AI मॉडल्स को टेस्ट करते हैं ताकि उनकी एक्यूरेसी, सेफ्टी, कंसिस्टेंसी, रीजनिंग, हार्मफुल कंटेंट अवॉइडेंस और फैक्चुअल करेक्टनेस को मेजर किया जा सके।
1: जी,
2: ये एवेल्यूएशन जनरली स्टैंडर्डाइज्ड डेटासेट्स पर होती हैं, जैसे बेंचमार्क्स, MCQs, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, कोडिंग टेस्ट, सेफ्टी सिनेरियोस और कन्वर्सेशन बेस्ड मेजरमेंट्स। मसला तब बनता है जब हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर AI टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो रियल वर्ल्ड में भी इक्वली परफॉर्म करेगी।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन ये अजम्पशन हमेशा सही नहीं होती, क्योंकि एवेल्यूएशन हेल्पफुल ज़रूर होती है लेकिन रियल वर्ल्ड रिलायबिलिटी को समझने के लिए कभी कभी सफिशेंट नहीं होती।
1: बिल्कुल,
2: तो ये हमें टेस्ट करने से पता लगता है कि इसमें क्या फ्लॉज हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या AI मॉडल्स को पता होता है कि उन्हें टेस्ट किया जा रहा है?
2: ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जो LLMs हैं उनके पास एक्सप्लिसिट अवेयरनेस नहीं होती
1: जी,
2: या उनकी अपनी कॉन्शियसनेस नहीं होती। उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होते हैं, पैटर्न अवेयर होते हैं। ट्रेनिंग डाटा में अक्सर टेस्ट फॉर्मेट या एग्जाम स्टाइल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ड्यू टू सेम पैटर्न, जैसे MCQs पैटर्न हो गए। एवेल्यूएशन डाटा सेट्स पे हमारे पास जैसे फ्रेजिंग स्टाइल होता है वो उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हम जब कभी कभी प्रॉम्प्ट देते हैं तो मॉडल उसे पहचान लेता है, उनका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लेता है, बिकॉज वो सिमिलर स्ट्रक्चर पे बनी होती हैं। तो टेस्ट स्पेसिफिक ट्रिक्स यूज करके अपना स्कोर बेहतर कर लेते हैं।
1: बिल्कुल,
2: हम आर्टिफिशियली प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव भी कर लें तो स्टिल उसमें सेफ्टी इल्यूजन क्रिएट हो जाती है, यानी कि हम टेस्ट के दौरान हमें मॉडल बहुत सेफ, कॉशियस और इंटेलिजेंट नज़र आता है, जबकि रियल वर्ल्ड में वो उतना स्टेबल नहीं होता जितना हम अज्यूम कर रहे होते हैं। क्योंकि हमने जब उसे टेस्ट प्रॉम्प्ट देके अपनी तरफ से फिल्टरिंग की और टेस्ट किए तो वी रियलाइज के ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट जब हम रियल वर्ल्ड में उसे टेस्ट करेंगे तो वो उस तरह का परफॉर्म नहीं करेगा, या जो स्कोर उसने टेस्ट के दौरान अचीव किया था सेफ्टी मेजर्स पे वो रियलिटी में नहीं होता। तो हम इसलिए कहते हैं कि इल्यूजन है।
1: अभी आपने जिक्र किया सेफ्टी इल्यूजन का, तो हमारे सुनने वालों को बताएं कि सेफ्टी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट क्या है?
2: सेफ्टी इल्यूजन का मतलब ये होता है कि AI टेस्ट हमें वो तस्वीर दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, ना कि वो जो AI असल दुनिया में परफॉर्म करेगी। टेस्ट सिनेरियोस प्रेडिक्टेबल होते हैं और AI उन प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स को लर्न कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस आर्टिफिशियली अच्छी नज़र आती है। मिसाल के तौर पे स्ट्रक्चर टेस्ट क्वेश्चंस को मॉडल आसानी से गेस कर लेता है। अब सेफ्टी फिल्टर्स टेस्ट में स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं इसलिए मॉडल सेफ लगता है। रियल वर्ल्ड में प्रॉम्प्ट्स मैसी होते हैं, वेग होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जहाँ पे AI फेल हो सकती है या हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि AI की टेस्ट सेफ्टी एक इल्यूजन है, जबकि रियल सेफ्टी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें कि जब हमने इसको एवेल्यूएट किया टेस्ट के लिए और जब इसने रियलिटी में जो स्कोर परफॉर्म किया तो उनमें बहुत मिसमैच होता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये इल्यूजन डेंजरस क्यों समझे जाते हैं या ये डेंजरस क्यों है?
2: ये इल्यूजन कई वजह से डेंजरस है। सबसे पहले ये यूज़र में ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देती है। जहाँ वो सोचते हैं कि एआई हमेशा सही जवाब देगी, या दूसरा मिसयूज़ कर इसका आ जाता है, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या डिफरेंट बिजनेसेस डोमेन्स हैं जहाँ पे बिना वेरीफाई किए एआई के डिसीजंस यूज़ कर लेते हैं। तीसरा हमारे पास मसला बनता है कि एक्सपोजर, बायस एक्सपोजर हमारे पास आ जाता है। अब बायस एक्सपोजर हमारे पास सेफ्टी वैल्यूएशंस में तो नज़र नहीं आता, या मॉडल हमारे पास क्योंकि वो उस टाइम वैल्यूएट हो रहा होता है तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हम ये समझते हैं कि अगर टेस्ट में इसने बायस एक्सपोजर नहीं शो किया तो अदरवाइज हमारे पास रियलिटी में भी नहीं होगा। बट जब रियलिटी में कोई प्रॉम्प्ट दी जाती है तो वहाँ पे प्रॉम्प्ट में बायस हो सकता है, क्योंकि वो उस तरह से डिज़ाइन नहीं हुई जैसे कि हमारा कोई भी टेस्ट पैटर्न डिज़ाइन किया होता है। फिर हमारे पास सेफ्टी बायपासिंग भी एक मेजर इशू है, जहां एआई सिंपल रीफ्रेजिंग से हार्मफुल कंटेंट जनरेट कर देती है और वो उससे खुद भी अवेयर नहीं होती। चौथा, सेफ्टी बायपासिंग भी एक मेजर इशू है, जहां एआई सिंपल रीफ्रेजिंग से हार्मफुल कंटेंट जनरेट कर देती है। इवन आफ्टर स्कोरिंग टॉप इन सेफ्टी वैल्यूएशंस, हमारे पास रॉन्ग डिसीजन मेकिंग का रिस्क बना रहता है, स्पेशली मेडिसिन, लीगल एडवाइस, हायरिंग के प्रोसेस हो गया या ग्रेडिंग होगी, जो इस तरह के सेंसिटिव एरियाज हैं जो रियल टाइम में ह्यूमन के लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। एआई का गलत बिहेवियर वहाँ पे एक उनके लिए रियल टाइम में कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है।
1: बिल्कुल,
2: हमें ये लगता है कि हमने जो मॉडल को यूज़ किया है वो रिलायबल है, हम डिसीजन मेकिंग के लिए रिलाई कर सकते हैं, बट जब इसको यूज़ किया जाता है तो वो इल्यूजन ब्रेक हो जाती है, बट कॉन्सिक्वेंसेस रियल बन जाते हैं।
1: बिल्कुल लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का। हमारे साथ रहें, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। लिसनर्स, ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि AI वैल्यूएशन में सेफ्टी इल्यूजंस क्या होते हैं और ये किस तरह हमारे रियल लाइफ पे इफेक्ट करते हैं, किस तरह रिसर्चर्स को प्रॉब्लम्स इससे फेस करनी पड़ती है। और इसी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलशन सलीम साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आपने ब्रेक पे जाने से पहले हमें बताया कि सेफ्टी इल्यूजन क्या होते हैं, ये किस तरह डेंजरस हो सकते हैं और एकेडमिक और एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में इनके क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, और फिर हम बात कर रहे थे कि रिसर्चर्स इससे किस तरह डील करते हैं। लेकिन हमारा जो असल कंसर्न है वो हमारे यूज़र्स, आम जो कॉमन पर्सन हैं, ले मैन हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिहाज से है। तो आप हमारे सुनने वालों को बताएं, हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि वो इन सेफ्टी इल्यूजन से बचने के लिए या इनको ओवरकम करने के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं।
2: आम यूज़र्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो AI आउटपुट्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। सबसे पहले हर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें, स्पेशली साइटेशन होगी, नंबर्स या स्टैटिक्स हो गए, और साथ ही हमारे पास जो फाइनल आंसर जनरेट करके दिया है किसी प्रॉम्प्ट का हमें, तो उसको समझने की कोशिश करें कि एज अ जनरेटर उसने जो प्रॉम्प्ट हमें जनरेट करके दिए या प्रॉम्प्ट का रिस्पांस दिया है वो एक्यूरेट है कि नहीं। और सिर्फ यूज़ जो है उसका गाइडेंस के लिए इस्तेमाल करें। अगर कोई जवाब बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है तो उसे डबल चेक करना चाहिए, क्योंकि हेलुसिनेशन भी कॉमन फैक्टर है हमारे पास AI में। और फिर दूसरा, हमारे पास पर्सनल या सेंसिटिव डेटा जो है AI के साथ शेयर ना करें, ठीक है। AI को टीचर का रिप्लेसमेंट ना समझें, ठीक है, उसको सिर्फ एक असिस्टेंट के तौर पे यूज़ करें। एक्चुअल एवेल्युएटर इंसान खुद हो तो हमें ये मसले नहीं बनते। जब हम AI को ही टीचर समझ लेते हैं या वो हमें ऐसे रिस्पॉन्स जनरेट करता है कि हम ये समझते हैं कि इनको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तब हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अगर
1: समटाइम तो ये होता है कि टीचर की बताई हुई बात को स्टूडेंट समझते हैं कि गलत बता रहे हैं, जो हमने AI से पूछा था या ChatGPT से पता किया था वो ज़्यादा रिलायबल आंसर है।
2: यही रीज़न है कि हम ये अज्यूम करें कि सेफ्टी इल्यूजन के लिए एवेल्यूएशन स्ट्रेटजीज हमारे पास बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिलायंस हमारे पास इसमें जिस तरह से इंक्रीज हो रही है और लोग ये समझ रहे हैं कि ये मशीन है और ये स्टैटिस्टिक्स की बेस पे रिस्पांस दे रही है या फैक्ट्स की बेस पे दे रही है, वो उतना फैक्चुअल नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बायस अवेयरनेस मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि AI की सजेशन हमेशा कल्चरली न्यूट्रल नहीं होती हैं। हम ये समझते हैं कि मशीन का कल्चरल बायस नहीं होगा, बट वो जिस तरह के बेंचमार्क या डाटा पे ट्रेन है वहाँ पे क्वाइट पॉसिबल है कि वो आपको एक कल्चरल बायस्ड रिस्पांस भी जनरेट कर सकती है, जो कि आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम में आपको उतना सूटेबल ना रहे।
1: डॉक्टर साहब, क्या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स रियल टाइम लर्निंग करते हैं और क्या ये सेफ्टी इल्यूजंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं?
2: ये बहुत कॉमनली मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे GPT, क्लॉड, जेमिनी रियल टाइम में सीखते रहते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो साथ साथ सीख रहे हैं और हर यूज़र की कन्वर्सेशन के साथ ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं।
1: बिल्कुल,
2: टेक्निकली ऐसा नहीं होता। LLMs दो तरह की लर्निंग यूज़ करते हैं, प्री ट्रेनिंग जो कि स्टैटिक होती है और जिसमें मॉडल बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे लर्निंग करता है, उन्हीं से पैटर्न सीखता है, और फिर री इन्फोर्समेंट लर्निंग या फाइन ट्यूनिंग जो ह्यूमन रिसर्चर्स मैनुअली करते हैं उसको यूज़ करके ट्रेन होता है। मॉडल खुद से रियल टाइम में अपडेट नहीं हो रहा होता। जब लोग देखते हैं कि मॉडल कन्वर्सेशन के फ्लो के साथ साथ एडजस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है तो उनको लगता है AI सीख रही है, लेकिन असल में वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट अब्जॉर्ब कर रही होती है। रियलिटी ये है, कॉन्टेक्स्ट चेंज होते ही मॉडल का बिहेवियर म्यूटेट कर सकता है, कॉन्ट्राडिक्शंस आ सकती हैं और प्रीवियस सेफ्टी गाइडलाइंस ओवरराइड हो सकती हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसकी वजह से इल्यूजन क्रिएट होती है कि मॉडल कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है, जबकि एक्चुअली वो बहुत ब्रिटल और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। तो हमारी अपनी ये अवेयरनेस, क्योंकि वो हमें प्रॉम्प्ट के साथ साथ हर प्रॉम्प्ट, अगर हम सेम चैट में सेम प्रॉम्प्ट को बार बार दे रहे हैं और उससे मजीद सवाल कर रहे हैं तो हमें उसका रिस्पांस बेहतर नज़र आता है। वही हमें ये आइडिया देती है कि ये साथ साथ सीख रहा है, जबकि वो असल में सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपना रिस्पॉन्स बेहतर कर रहा होता है, जबकि वो सीख नहीं रहा होता। तो ये एक हमारी मिसकंसेप्शन है जिसके बारे में हमारी क्लियरिटी होना ज़रूरी है कि वो पहले से ट्रेन है, वो साथ साथ नहीं सीखता।
1: बिल्कुल। रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट में AI इवैल्यूएशन क्यों फेल होता है? इंडस्ट्रियल और एंटरप्राइजेस केस इस बारे में क्या कहते हैं?
2: AI जब लैब टेस्ट पास करके रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय होती है तो कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सामने आ सकती है, जो तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट है हमारे पास। AI जिस क्लीन और प्रेडिक्टेबल डाटा पर टेस्ट होती है, रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। एजुकेशनल चैटबोर्ड्स रियल स्टूडेंट क्यूरीज को समझ नहीं पाते, बैंकिंग चैटबोर्ड्स एज केस सिनेरियोज हैंडल नहीं कर पाते, और HR टूल कल्चरल डिफरेंसेस को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। दूसरा, हमारे पास यूजर बिहेवियर वेरिएबिलिटी होती है, जहाँ रियल यूजर क्रिएटिव होते हैं और AI को ट्रिक करते हैं, एज केसेस ट्राई करते हैं, सेफ्टी बायपास प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं या सार्केस्टिक टोन यूज करते हैं, जो मॉडल के लिए अनएक्सपेक्टेड होता है। तीसरा, हमारे पास मल्टी स्टेक होल्डर प्रेशर भी आ सकता है, जहां इंडस्ट्रियल AI को कस्टमर की एक्सपेक्टेशन या लीगल कंप्लायंस, कॉर्पोरेट पॉलिसीज, एथिकल गाइडलाइंस या टाइम प्रेशर और बिजनेस के KPI के बीच काम करना होता है। इन प्रेशर के होते हुए AI सेफ्टी डिसीजंस को कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, यानी AI लैब में सेफ होती है लेकिन इंडस्ट्री में रिस्की हो जाती है, और ये मिसमैच सेफ्टी इल्यूजन का इंडस्ट्रियल वर्जन बन जाती है। तो हमारे पास मेन इशू ये बनता है कि हम एक लिमिटेड सिनेरियो पे ऑलरेडी मॉडल को ट्रेन कर चुके होते हैं, बट क्योंकि हमारा यूजर वेरिएबल भी हो सकता है, क्रिएटिव भी हो सकता है, और वो ट्रिकी भी हो सकता है, और समटाइम्स सार्केस्टिक होने की वजह से वो मॉडल को कुछ इस तरह की प्रॉम्प्ट देता है कि जो बिहेवियर उससे एक्सपेक्टेड था वो परफॉर्म नहीं कर पाती। और जब हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में हमारे पास कॉस्ट और मनी और रेपुटेशन साथ साथ एसोसिएटेड होते हैं उसकी सक्सेसफुल होने के लिए, जबकि AI इन चीज़ों से उस तरह से अवेयर नहीं होती। वो एक रिस्पॉन्स तो जनरेट करता है, बट आपकी प्रॉम्प्ट जो है अनक्लियर होते हुए वो आपको उतना गाइड नहीं कर पाता, या आपकी रिलायंस आपको एक मिसलीडिंग फैक्टर की तरफ लेके जा सकती है।
1: डॉक्टर साहिबा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त लिमिटेड है, फ्यूचर में AI एवेल्यूएशन किस तरह काम करेगी या किस तरह इसके ऊपर काम किया जाएगा कि सेफ्टी इल्यूजंस को ओवरकम किया जा सके?
2: फ्यूचर AI एवेल्यूएशन बहुत डायनामिक और मल्टीलेयर होगा। अभी हमारे पास जो एवेल्यूएशन है वो उतनी ट्रिकी नहीं है, या कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आने वाले दौर में बिहेवियर एवेल्यूएशन भी होगी, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ऑफ आउटपुट्स भी होगी, सिनेरियो ड्रिवन टेस्टिंग भी होगी, फिर AB टेस्टिंग अक्रॉस ग्लोबल डाटा सेट भी हम करेंगे, जहाँ पे हम दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग सैम्पल्स को टेस्ट करते हैं सेम प्रॉब्लम के लिए। फिर हमारे पास पर्सनलाइज सेफ्टी लेयर्स भी होंगी कि अगर कोई कस्टमाइज या पर्सनलाइज्ड वे में AI को यूज़ करना चाह रहा है तो उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ कंटिन्यूस लर्निंग बेस्ड एवेल्यूएशन भी होंगी, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हम AI की असेसमेंट जिस तरह से कर रहे हैं उसी हिसाब से वो हमारे पास रियल टाइम में भी रिस्पॉन्स जनरेट करे। और AI का इम्तहान सिर्फ एक सिंगल टेस्ट नहीं होगा। अगर हम AI को वैल्यूएट कर रहे हैं और अभी हम एक स्टैटिक टेस्ट हमने क्रिएट कर लिया है, तो तब हमारे पास फ्यूचर में मल्टीपल सिनेरियोज, मल्टीपल कस्टमाइज वेज होंगे, टेक्निक्स होंगे जो कि उसको टेस्ट करने के लिए यूज़ की जा रही होंगी, और मल्टी लेयर्ड असेसमेंट साइकिल जो है वो उसकी रियल वर्ल्ड कम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प भी करेगा और हमें वो स्कोर बताएगा जो कि समहाउ रियल सिनेरियो के साथ मैच कर सकता हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए तो टेस्टिंग में तो AI अभी भी टॉप स्कोर पे होती है, तो वो रियल वर्ल्ड में लॉन्च की जाती है और लोगों के लिए यूज़ के लिए प्रोवाइड की जाती है। मसला तो सिंपल ये आ रहा है कि जो टेस्ट उसने लैब में परफॉर्म किए और उन पे जो उसका स्कोर आया, वो सेम स्कोर या वो सेम एक्सपेक्टेशन हम रियल वर्ल्ड में नहीं देख पा रहे। और अगर मेरे पास यही टेस्ट, जैसे मैंने मेंशन किया कि मल्टी लेयर या डायनामिक होंगे और हमारे पास कस्टमाइज्ड होंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये तो नहीं कि 100%, बट ये काफ़ी हद तक हमें एक रियलिटी या रियल बेस्ड सिनेरियोज जो हमारे हैं, रियलिटी बेस्ड सिनेरियोज हैं, उनसे रेलिवेंट हमें आंसर मिलेगा और हम रिलाई समहाउ कर सकेंगे एटलीस्ट फैक्चुअल करेक्टनेस के लिए।
1: बिल्कुल। लिसनर्स, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात आ चुके हैं। हम अपनी ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर गुलशन सलीम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया।
2: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
1: जज़ाकर। लिसनर्स, आज के सेशन से हमें ये समझ आया कि एआई टेस्ट हमेशा ट्रू पिक्चर नहीं दिखाते, सेफ्टी इल्यूजन रियल है, एवेल्युएशन फ्रेमवर्क्स को इवॉल्व होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल यूज बहुत जरूरी है। लिसनर्स, एआई एक पावरफुल टूल है मगर पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हम सबका फर्ज है कि टेक्नोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, समझकर यूज करें, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ अप्लाई करें।

इस सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: आप भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा।
1: वाकई?
0: हाँ।
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
5: टर्न ऑन द रेडियो एंड ट्यून इन FM 92.6 UCB दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyan.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 to life. Station of the nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: मौसीकी के सुर और तान, सुर और तान, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
2: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
3: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.2 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: Ek naya andaaz.
2: Ek nayi soch.
1: Ek nayi pehchan.
2: Ek nayi lagan.
1: UCP में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

అలందరం మస్తం ఆదరియం అలందరం మస్తం పండాయ ముర్తజా.